0: 安娜，爷妈妈跟几样不来了，
1: 可以了。
0: 我隔间的吃呢，阿妈 TV。아나我순달신이겠다
1: 우이와거자순달신이니겠다
2: 남겔뿌리얀치감마마
1: 맥겔액바트라로판나외라치액순달신그릇나라
2: 근치위시아리마마
1: 근치위시아리바트라판나판나말아리강가왕
0: 강가왕
1: 판나판나리
0: 판나판나리
1: 판나나와서
2: 자이드마마판마암पुर से दर कर तू क्या छोड़े जब तू आ
0: पन्ना ये पन्ना अयो देवा क्या पुकिट माँ माइलो उसला उसली कप कपला का अयो एनएसी ना हाँ वनी जुट्टा मेरा पन्ना
1: हाँ यो किट माँ या या
0: मेरा
1: हाँ
0: तू ते कल्याण माँ ये कंचन में पाने दिला रहा है
1: कुछ जल्ला है
0: ते कोर्जू मुन्न बाप गलत रहा
1: वही बा
0: तेरा तू को पन्ना दूध डाउन दिला ना तू का
1: वही
0: तू क्या पुत्ता नोच नो पस्ते क्या लगी चार कटा दूध गेट लगे शेर तो कंपो कुंचो
1: हाँ वो तल्लक तुल्ला दूध गेटला मुन्न संगु विसल
0: रहा
1: है
0: कैसा
1: आसुकेट माँ मासो बैसा बैसा
2: माँ
1: माँ बैसा तू ही बैसा
0: कहीं की पढ़े लोग जत्ता
1: माँ मिकल काश दोस्तों केट माँ मनो
2: ओके ओके
0: हाँ कहीं की पढ़े लोग जत्ता एक घंटे पुड़ाऊँ कहीं की पढ़े लाका कहीं
2: मामा कंकन आड़ी बा
0: पच्चन आड़ी
1: बच्चन आड़ी ने कौनचाड़ी
0: कंकन आड़ी मक्षी गेटर वो चिमल लोला इधर बच्चों इधर पन्ना कैसा शाक रहे थाड़े पर सुखता मातूदा पियू करे अरे तू कुछ आई बे
1: लक्का अंग बरपुरस नो आ

0: रेडियो सारंग 107.8 FM जय हे
1: तुलुवलानी रेडियो सारंग 107.8 FM रंग रंगदा बदक इत्ते तुलु प्रसार

0: रेडियो सारंग 107.8 FM
1: करुणाळुबा बेळके
2: नानु डॉक्टर गुरुराज कर्जगी नीवु केळुत्ता इद्दीरि रेडियो सारंग 107.8 कै